शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म जॉनी मेरा नाम से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चोरी चोरी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं बरखा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म सफ़र से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और दोस्तों, अब हमें भी चलना होगा आपको छोड़ के, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही यही है कि आए हैं तो छोड़ना भी पड़ेगा ही और जाना भी पड़ेगा। और इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि। तदनुसार 22 जून 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका

सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न-ए-हैदराबाद इज योर

Welcome back, dear listeners. Hope your morning is really good. And namaste, hello, aadab. में आज हम बहुत सारे बातें करने वाले हैं और ढेर सारे गाने भी सुनने वाले हैं. तो stay tuned, सुनते रहिए Rainbow FM 101.9 with me, your RJ निधि.

Today is a very special day, and I personally feel that everybody should be celebrating this day. Welcome back, dear listeners. आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब आपकी अपनी आरजे निधि के साथ. तो चलिए आज के दिन का खासियत क्या है उसके बारे में बात करते हैं. इट्स द वन डे ऑफ द ईयर डेडिकेटेड एंटायरली टू द ब्यूटिफुल मेसी परफेक्टली इम्परफेक्ट पर्सन दैट यू आर. जी हाँ, आज इंटरनेशनल बीइंग यू डे है. आज का दिन हमें ये रिमाइंड करता है कि यू डोंट नीड टू चेंज अ सिंगल थिंग टू प्लीज द वर्ल्ड टुडे. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड खुद के जर्नी को लेके प्राउड फील करो. लेट्स जस्ट स्पेंड द मॉर्निंग सेलिब्रेटिंग दैट. यू आर लिसनिंग टू रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

नमस्ते, हेलो आदाब माय डियर लिसनर्स. हम बात कर रहे थे अबाउट इंटरनेशनल बीइंग यू डे. एंड ऐसे काफ़ी टाइम्स आते हैं हर किसी के लाइफ में जहां वी फील कि वी आर नॉट इनफ एंड हम इस सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहे. एंड अननोइंगली वी स्टार्ट टू चेंज एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट टू लूज आर सेल्व्स. सो 22 जून हम सबको एक रिमाइंडर के तरह है टू डिच सेल्फ जजमेंट एंड एम्ब्रेस आर यूनिक क्वालिटीज रादर देन ट्राइंग टू फिट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस. ये दिन ग्लोबली रिनाउंड स्पीकर और ऑथर डॉक्टर डायन हीर ने स्टार्ट किया था, जो उनके इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बीइंग यू चेंजिंग द वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है. आज का दिन हम मिरर के सामने जाओ, अपने आप को पॉजिटिव्स देखो, नेगेटिव्स

भी देखो और विदाउट जजमेंट्स और कंपैरिजंस जस्ट एम्ब्रेस योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

अगर आप इजीली खुल के सांस ले पा रहे तो यू माइट वांट टू सेंड अ साइलेंट थैंक यू टू एन इकोसिस्टम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. टुडे इज जून 22nd एंड इट इज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे एंड यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 आपकी अपनी आरजे निधि के साथ. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट डू वी हैव टू डू विद द रेन फॉरेस्ट जो हमसे मीलों दूरी में है व्हेन वी आर लिविंग इन दिस बिजी सिटी कॉन्क्रीट जंगल. बट द फैक्ट इज हम हर सेकेंड उन्हीं से जुड़े हुए हैं. ये रेन फॉरेस्ट पूरी दुनिया के लंग्स है, हमारे प्लैनेट की असली ऑक्सीजन फैक्ट्री. सिर्फ एमेजॉन फॉरेस्ट ही पूरी दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑक्सीजन. अगर आज सुबह आप कॉफ़ी पिए थे या कोई चॉकलेट खाए थे उसके लिए भी रेन फॉरेस्ट ही बेस है. यहाँ तक कि हम जो दवाइयाँ लेते हैं उनमें से 25% से ज़्यादा मेडिसिन इन्हीं रेन फॉरेस्ट में से बनता है. आई विल बी राइट बैक एंड टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू अस.

So that was Khali Bali from Padmavat, and you are listening to Rainbow FM 101.9 with me, your RJ Nidhi. So ye gana jo Padmavat song, Padmavat movie ka hai, is पफो पैक्ड एंड इज कोरियोग्राफ बाय गणेश आचार्या. इस गाने में एग्रेसिव फुटेड एनिमलिस्टिक डांस करना था एंड रणवीर सिंह रॉक द परफॉर्मेंस. बट ये कहा जाता है कि ये परफॉर्मेंस के द्वारा उनका हैवी कॉस्ट्यूम और हैवी स्टेप्स के वजह से ही हैड हिज नीज बर्निंग एंड टेक्स के बीच में हर बार आइस पैक लगाना पड़ता था ताकि वापस जाके टेक कर सके. सो दैट हार्ड इट वॉज डांसिंग फॉर कली बली एंड वी डेफिनेटली सॉ द रिजल्ट ऑन स्क्रीन. एंड आई मस्ट से रणवीर सिंह वॉज फायर इन दिस सॉन्ग. तो सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 और मैं हूँ आपकी अपनी RJ निधि.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27

पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिरसिक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Vanakkam, namaste, and welcome back to all the beautiful people out there. You are listening to Namaste, Hello, Adab. And if you are a fan of Indian cinema or politics, you know this isn't just another regular Monday. Happy birthday to the one and only Talapati Vijay. For decades, he ruled silver screen and unke dance moves ke saath sabko mesmerize karte rahe. And unka style, wo to ek generation ko hi define karta hai. पर आज हम सिर्फ एक सिनेमा सुपरस्टार को ही नहीं बल्कि एक मैसिव पॉलिटिकल फोर्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तलपति हैज ऑफिशियली मूव्ड फ्रॉम रूलिंग द बॉक्स ऑफिस टू गाइडिंग द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज द चीफ मिनिस्टर। सो टू द लीडर ऑफ मासेस, द एंटरटेनर ऑफ जनरेशंस एंड द जननायगन हिमसेल्फ, विशिंग यू अ फेनोमिनल बर्थडे एंड अ हिस्टोरिकल ईयर अहेड। पास्ट कुछ दिनों से पूरा इंडिया तमिलनाडु के तरफ देख रहा है बिकॉज ऑफ दिस मैन, एंड हर साल ही तमिलनाडु में इनका बर्थडे फेस्टिवल के तरह मनाते हैं। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस साल का माहौल कैसा रहेगा वहाँ पे। यू आर लिसनिंग टू रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब विथ मी योर आरजे निधि। यू नो सम मूवीज एंड सॉन्ग्स डोंट जस्ट गिव अस एंटरटेनमेंट, वो हमारे इतने फेवरेट और करीब हो जाते हैं, दे जस्ट स्टे विथ अस। एंड डेफिनेटली ये जवानी है दीवानी इज वन ऑफ सच मूवीज। वी ऑल नो अरिजीत सिंह फॉर हिज कामिंग वॉइस, बट हियर ही इज ये फुल हाई एनर्जी वाला गाना गाते हुए अलॉन्ग साइड सुनिधि चौहान, द पावर हाउस। आज भी संगीत या पार्टी या हर जगह जो जहाँ भी हम हाई एनर्जी वाले गाने प्ले करते हैं, दिस गाना रूल्स देयर। एंड इट्स ऑलमोस्ट बिन अ डेकेड और मे बी उससे भी ज़्यादा सिंस दिस सॉन्ग हैज़ बिन रिलीज, एंड दैट्स हाउ सम मूवीज एंड सॉन्ग्स जस्ट स्टे विद अस। यू आर लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो स्टे विथ मी नाउ। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि. ओके, सो लास्ट फ्यू इयर्स मेनली आफ्टर कोविड हम सबका पेमेंट करने का मोड हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. पहले इट वॉज मेनली कैश, एंड रही बात UPI ट्रांजेक्शन्स का तो मुझे याद ही नहीं है. आई क्लियरली रिमेंबर हाउ आई यूज टू गो टू द ATM विथ माई पेरेंट्स फॉर कैश. एंड एक छोटा सा फन फैक्ट ये भी है कि ATM से कैश विड्रॉ करना मैं सीख ही गई थी एग्जैक्टली तभी लॉकडाउन शुरू हुआ. एंड वी एक्चुअली स्टॉप गोइंग टू ATMs दैट फ्रीक्वेंटली बिकॉज इंडिया इज नाउ डीलिंग विथ कैशलेस ट्रांजेक्शन्स. छोटा सा ग्रॉसरी का स्टॉल से लेके किराना स्टोर्स, बेकरीज, कोकोनट की बंडी, हर जगह हमें UPI ट्रांजेक्शन करने की फैसिलिटी है. एंड ऑनेस्टली मैं खुद 2-3 रुपए भी ऑनलाइन करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी. आई डोंट हैव टू कैरी एनी कैश विथ मी, इट्स जस्ट माय फ़ोन. एंड रही बात छुट्टे का, वो भी हमें ऑनलाइन मिल रहा है. जस्ट इन केस अगर पहले वी आर गिविंग कैश टू किराना स्टोर वाले भैया एंड ही डजेंट हैव चेंज, हिज सोल्यूशन वुड बी आजू बाजू शॉप्स को जाके चेंज लाना. बट नाउ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी भैया भी बोलेंगे कि मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ कैश. सो दैट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ एंड थिंग्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं. तो आज का हमारा फ़ोन इन टॉपिक भी इसी से जुड़ा हुआ है. हम जल्दी जुड़ेंगे हेलो रेनबो पे. सुनते रहिए रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

0: Hey there! Do you agree with me that some emotions cannot be explained? They can only be tasted. With a pinch of history, a spoonful of culture, and with a whole lot of flavor, every dish has a tale to tell. Of its roots, of its rich legacy, and about the goodness within it. From royal recipes to timeless streetside favorites, discover the stories behind your loved foods on Jashne Hyderabad on Rainbow FM at 2 p.m. every day. Jashne Hyderabad, where food is served on air.
1: Welcome back to Hello Rainbow and aap sun rahe ho Rainbow FM 101.9 with me your RJ Nidhi. So personally mera experience jo hai cash aur cashless ka, to jab covid se pehle ka time tha, I didn't have a personal account or something transactions ke liye, to mujhe utna zyada difference nahi dikha because कैश ही लेके जाते थे हम और ATMs में से कैश विड्रॉल करते थे. आई रिमेंबर आई यूज़ टू गो विद माय पेरेंट्स विड्रॉल के लिए एंड मैं सीख भी रही थी थोड़ा थोड़ा. और फिर आफ्टर कोविड जब एक्चुअली मैं मुझे ट्रांजैक्शंस करने का टाइम आया है, मुझे कैश का ज़रूरत ही नहीं पड़ा. आई हैव ऑलवेज डन UPI ट्रांजैक्शंस. तो ऐसा आपके भी एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हैं हमारे नंबर 0402323003 0402323482104029704715 पे.

0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 और हम हैं हेलो रेनबो पे। चलिए हम कॉलर से बात कर लेते हैं।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, आपका नाम?
1: मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, आप टॉपिक सुने हो?
1: जी जी, मैं सुना हूँ टॉपिक।
0: जी बोलिए, आपके एक्सपीरियंस।
1: ये जो UTI कराना चल रहा ना, बहुत अच्छा है। ये
0: अच्छा है,
1: क्यों बोलेंगे तो आप कभी बाहर के कंट्री में से भी अपने को पैसा मिनटों में पहुंच जाता।
0: जी वेरी वेरी ट्रू।
1: ये फोन पे भी डाल सकते हैं, किसी के अकाउंट में भी डाल सकते हैं, तो अपन ATM से जाके निकाल ले सकते, कैश ले ले सकते।
0: सही है, सही है।
1: किसी को ट्रांसफर करना है तो फोन द्वारा भी कर ले सकते।
0: बिल्कुल सही है।
1: बहुत सारे इसके फोन के बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे भी है, नुकसान भी है, मगर अपन फायदों को देखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मेरे बहुत सारे रिश्तेदार तो मिडिल ईस्ट में जाते थे पहले भी, तो उनके मदर फादर को बच्चों से बात करने बहुत मुश्किल हो जाती थी। 500-500 रुपए लग जाते थे और उनको बात बरोबर होती नहीं थी, फर पैसे कट जाते थे उसमें। अब तो आराम से बात हो रही, वीडियो द्वारा बात हो रही, फोन द्वारा बात हो रही, अच्छी बात हो रही। अच्छे भी इसके नतीजे अच्छे भी है। अब देखिए, कोई दो रास्ते, एक साफ रास्ता है, एक रास्ता रफ है, रफ एंड टफ है, तो अपन साफ रास्ते से जाना पसंद करेंगे ना।
0: जी बिल्कुल।
1: गलत सर तो उल्टे सीधे रास्ते से अपन गड़े गुड़े तो उसमें से जाना पसंद नहीं करेंगे। अपने हाथ में पैसा इस्तेमाल करना।
0: तो आपको कैशलेस ट्रांजैक्शंस पसंद आए ज्यादा, कैश ट्रांजैक्शंस?
1: हाँ हाँ, पसंद आया मेरे को। मैं जहाँ से बोले पैसे, इंडिया से बोलो, बाहर से बोलो, किसी से भी बोलो, पैसे अपने को नगद मिल, नगद चाहे नगद, फोन में बोले फोन, वैसा मिल जाता है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर।
1: बहुत अच्छा ये व्यवस्था है।
0: थैंक यू सर। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून मैडम, कैसे हैं मैडम?
0: गुड आफ्टरनून सर, मैं ठीक हूँ। आपका नाम?
2: के रमेश बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी आप कैसे हो?
2: बिल्कुल सुपर के ऊपर है मैडम।
0: आप आज का टॉपिक सुने हो?
2: नहीं सुना मैडम।
0: आज का टॉपिक है कि पहले हम जो है कैश ट्रांजैक्शंस करते थे, बट अब UPI वो सब आने के बाद हम ज्यादा UPI कर रहे हैं। तो आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया और आपके एक्सपीरियंसेस क्या है?
2: मैडम के रमेश उस्मान मैम
0: जी,
2: देखो मैडम जितना अच्छा हो गया, अब करेंसी नोट प्रिंट करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता था एक जमाने में अपने।
0: सही है सर, सही है।
2: अभी तो खुद भी क्यों बोलते कि पूरा ऑनलाइन में हो गया। बैंक में जाके भी, अकाउंट में जाके चेक दे के पैसा लेना, वो भी उतना जरूरत नहीं है आजकल, खाली फोन पे से चल रहा। बहुत फायदा हो रहा है इसलिए। बैंक जाके आधा घंटा घंटा लाइन में ठहरना, पैसे लेना, चेक देना, कितना भी प्रॉब्लम होता था। ये मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। और क्या, जीरो बैलेंस अकाउंट भी देखे भी सबको, कितने कम से कम 55 करोड़ लोग अकाउंट खोले।
0: सही है, सही है सर,
2: बहुत अच्छा हो गया। इसलिए सबको सुकून हो गया, ये बहुत फोन पे ही सबसे अच्छा है मैडम।
0: तो आपको कैश से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस ही ज्यादा पसंद है?
2: नहीं, अपने जेब में 10 रुपए रख लेके फिरने के लिए ऑटो को वाले पास ही फोन पे, तरकारी वाले फोन पे, हर जगह फोन पे,
0: सबके पास फोन पे है। सही है सर,
2: बिल्कुल। बहुत इंडिया को तो बहुत बेनिफिट।

0: उससे,
1: बहुत बेनिफिट है, थैंक
0: कारण
1: यू
0: कि
1: सर।
0: इतना पैसा खर्चा होता था उसके नोट प्रिंट के लिए,
1: हाँ
0: ऐसा तो खर्चा ही नहीं है आजकल।
1: जी जी
0: धन्यवाद मैडम, खेर में
1: थैंक यू
0: मान
1: सर,
0: गए।
1: थैंक यू सर। सो वो था हमारे लिजनर्स के एक्सपीरियंसेस। सो अभी तक तो सभी लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शंस ही ज़्यादा पसंद आया, एंड एवरीबडी थिंक्स इट इज़ अ बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। तो जी हाँ, आप भी आपके एक्सपीरियंसेस और आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर 0402323003, 0402323481 और 0402970-4715 पे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, रेनबो FM 101.9 पे। मैं हूँ आपकी RJ निधि।

0: बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस. तो जी हाँ, आप भी आपके एक्सपीरियंसेस और आपके ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. हमारे नंबर 0402323003, 0402323482 और 0402970475 पे. सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए रेनबो FM 101.9 पे. मैं हूँ आपकी आरजे निधि.
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई.
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9.
1: इट्स नॉट जस्ट फूड,
2: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन.
1: जश्न ए हैदराबाद.

0: वैसी ये बात है, महीना भर जैसे हो गया तो समाचार पत्र वाला जो है उसको भी पैसे देने होते हैं,
1: जरूरत नहीं है अभी जी।
0: पेट्रोल पेट्रोल भराने जाते हैं वहां पर भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं
1: जी सर।
0: अब आप भाजी लेने जाइए, फल लेने जाइए, होटल में जाइए, सब जगह हम यूपीआई का ही उपयोग करते हैं, या होटल में वगैरह तो हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमको रुपए गिनने की आवश्यकता नहीं है, एटीएम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आजकल तो कभी कभी एटीएम में भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन आजकल तो वो भीड़ भी कम हो गई है,
1: बिल्कुल नहीं रह रही है सर भीड़।
0: हाँ जी, तो संक्षिप्त रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे समय बदलता है हमको समय के साथ चलने की आवश्यकता है।
1: हाँ सर,
0: और जैसा मैंने अपना उदाहरण आपको बताया है कि मैं बदल गया हूँ, पहले मेरी धारणा ये थी कि भाई हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग क्यों करें, लेकिन धीरे से मेरी धारणा में परिवर्तन आया और मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया और क्रेडिट कार्ड का मैं उपयोग करने लगा हूँ। तो संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो अभी हो रहे हैं वो बहुत ही फायदे के हैं और समय की बचत होती है मुख्य रूप से, और कैश साथ में ले जाने का और कैश गुम होने का ये डर नहीं रहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ये मैं कहना चाह रहा था, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
1: थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: हे वेरी हंग्री, व्हाट स्पेशल टुडे?
3: बिरयानी, कबाब्स, हलीम, बट वेट, दिस मोर।
4: More than food, it's the stories behind the recipes, the history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
2: And where do we taste all these?
3: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
4: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani, it's a feast for your ears.
5: Jashne Hyderabad, savor the city's soul.

0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, रेनबो एफएम 101.9 पे विथ मी योर आजे निधि। चलिए हम हमारे कॉलर्स से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते सर।
1: सर स्वागत है, मैं भी आरजे निधि और सब आरजे को मेरा नमस्कार और सब लिसनर आरजे को भी आप दिए बहुत अच्छा कर दिए। जो क्रेडिट कार्ड के बारे में
0: जी,
1: पहले सुविधा नहीं था, नेट का से लेके बाहर जाए तो बहुत टेंशन आता था, चोरी हुआ, मेरा भी चोरी हो गया था, मंदिर में 12,000 रुपया और निकाल लिए
0: सर।
1: तो अभी जो क्रेडिट कार्ड निकला है बहुत सुविधा है और अपना का सुविधा साथ साथ दूसरों को हम हेल्प कर सकते हैं। मैं बिजनेस करूं
0: जी
1: बस स्टैंड में, बहुत जन भी उतर के ऑटो वाले को पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं होता, मैं भी देता हूँ उनको, उन्हें डालते क्रेडिट कार्ड में स्कैनर में, और 200-300 की जरूरत पड़े कोई मांगता है, कोई परेशान है, इधर नजदीक एटीएम नहीं है, वो भी हेल्प करूँ। ये बहुत सुविधा, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ दूसरों को मौका देना, मगर अभी जो बहुत सुविधा है नेटवर्क कुछ रखना, इमरजेंसी बहुत जाने का पैसा नहीं रहता, एक बार परेशान हो जा रहे हैं लोग, ऑटो वाले के पास पैसा नहीं रहते, मगर क्रेडिट का बहुत सुविधा है, अपना साथ साथ सकते
0: जी।
1: और मैं भी पेमेंट जो माल ला रहा हूँ थोड़ा, मैं भी 3,000-5,000 पेमेंट करूँ उनके नाम से, वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करूँ, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुविधा है
0: जी सर,
1: तो सही नियोजित करके सुविधा है
0: जी।
1: और क्रेडिट कार्ड का माध्यम से भी बहुत लोग लूट रहे, मेरा नाम से तो नहीं, मेरा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बैंक पैन सब ऑलरेडी ये लग कर
0: दिया।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: अच्छा सॉन्ग दे रहे, आपको मालूम है तो अच्छा गाना गाना आपका मर्जी से
0: जी, थैंक यू।
1: आप विश्व करें और बहुत खुश हो, दिन भर आज मेरा दिल खुश रहेगा, आप तुम्हारा आवाज से गाना गाओ
0: जी,
1: अच्छा लग रहा है तुम्हारा आवाज।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर।

0: మను జనరంజని.
1: Welcome back, dear listeners. That was such a good time spent in the studio and with all of you. Aaj ka din bahut bahut acha laga because aap sabse baatein hui, aap logon ke saath itne acche gaane play karne ko mila. Aur hum baat kar rahe the UPI transactions ya cash transactions kaun sa behtar hai. Aur hamare saath bahut sare callers jud gaye the aur unke opinions ke mutabik most of the people are enjoying the cashless transactions honestly because unko cash carry karne ki zarurat nahi pad rahi hai aur na hi cash chori hone ki zarurat koi ye ho raha hai. The only thing is unko thoda security ka dar hai ki agar kuch bhi, like there are many scams happening where ek chota sa OTP se pura bank account khali ho sakta hai, ek chota sa link press karte ki bahut sare scams ho sakte hai. So I think personally wo ek hi con hai about using online mode for payment. To hum sabko bahut bahut zyada careful rehna chahiye is baat pe. एंड मैसेजेस में भी आपको कभी गलत लिंक आए या गलत OTPs आए ऐसे ही बोलना बहुत डेंजरस हो सकता है. तो उसके लिए हमारे मैसेजेस में एक नया अपडेट आया है जहाँ पे आपको मैसेज के बाजू जी यानी गवर्नमेंट, एस यानी शॉपिंग, ऐसे आपको पता चल जाता है जब कहीं पे भी आपको वो अल्फ़ाबेट ना लिखे दिखे जैसे जी या एस या कुछ भी और वहाँ से आपको OTP या लिंक आए, प्लीज़ उसे बिल्कुल मत दबाना क्योंकि आपके साथ स्कैम होने का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो मेरे साथ यानी आपकी आरजे निधि के साथ और आज का टाइम बहुत ही अच्छा था. हम फिर जुड़ेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीक. सुनते रहे रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 10 सेकेंड हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

समय नैरंग में हरफ ताबिंदा के बाद पेश होगा बिसात गज़ल। बिसात गज़ल सिलसिले के तहत आप नजमुद्दीन फारूकी का कलाम सुन सकेंगे।

समय सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से कुछ बातें होंगी और कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन सकेंगे।

नरक में पेश किया जाएगा। फिल्मी गीतों से सजा खूबसूरत सा प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा।

0: सीखा जाए, नाकामी को सीखने का एक मौका समझा जाए। और ये तमाम चीज़ें उस वक्त ही मुमकिन है जब आपकी सोच वसी हो, आपकी सोच बुलंद हो। ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। आइए नैरंग की इस बज़ में आगे बढ़ते हैं और बिसात गज़ल सिलसिले के तहत सुनते हैं नजमुद्दीन फारूकी का कलाम।
1: किया है गजल का समझ फरमाएं कि सुर्ख रू इस जहान से निकला, सुर्ख रू इस जहान से निकला, मैं कड़े इम्तिहान से निकला, मैं कड़े इम्तिहान से निकला। अर्ज किया है कि लफ्ज हल्का भी बन गया भारी, लफ्ज हल्का भी बन गया भारी, वो जो जोरे बयान से निकला, वो जो जोरे बयान से निकला। अर्ज किया है कि शाम तक वो पहुंच गया घर को, शाम तक वो पहुंच गया घर को, सुबह की जो अजान से निकला, सुबह की जो अजान से निकला। शेर अर्ज किया है कि महवे हैरत रहे सभी अपने, महवे हैरत रहे सभी अपने, सख्त लहजा जबान से निकला, सख्त लहजा जबान से निकला, महवे हैरत रहे सभी अपने, सख्त लहजा जबान से निकला। शेर अर्ज किया है कि शोर मातम था उस जनाजे पर, शोर मातम था उस जनाजे पर, जब वो अपने मकान से निकला, जब वो अपने मकान से निकला। गजल का आखिरी शेर है कि बच्चे खुशियों से रक्स करते हैं, बच्चे खुशियों से रक्स करते हैं, चांद जो आसमान से निकला, चांद जो आसमान से निकला, बच्चे खुशियों से रक्स करते हैं, चांद जो आसमान से निकला। गजल का मख्ता इस तरह से है कि उसका किरदार था जफर पुख्ता, उसका किरदार था जफर पुख्ता, वो जो कच्चे मकान से निकला, वो जो कच्चे मकान से निकला, सुर्ख रू इस जहान से निकला, मैं कड़े इम्तिहान से निकला। हाजरीन एक और गजल समात फरमाई के अर्ज किया है कि मोहतसब जब से हूँ कमाई का, मोहतसब जब से हूँ कमाई का, है ख्याल अपनी पाई पाई का, है ख्याल अपनी पाई पाई का, मोहतसब जब से हूँ कमाई का, है ख्याल अपनी पाई पाई का। अर्ज किया है कि ऐब मुझ में हजार है लेकिन, ऐब मुझ में हजार हैं लेकिन, शोहरा हर सू है पारसाई का, शोहरा हर सू है पारसाई का। शेर यूं है कि दोस्ती प्यार अब कहाँ बाकी, दोस्ती प्यार अब कहाँ बाकी, आज दुश्मन है भाई भाई का, आज दुश्मन है भाई भाई का। और गजल का आखिरी शेर है कि उससे है मेरा खून का रिश्ता, उससे है मेरा खून का रिश्ता, वो जो दुश्मन है मेरे भाई का, वो जो दुश्मन है मेरे भाई का। और गजल का मक्ता यूं है कि क्यों नहीं आता है ख्याल जफर, क्यों नहीं आता है ख्याल जफर, अपने किरदार की सफाई का, अपने किरदार की सफाई का, मोहतसब जब से हूँ कमाई का, है ख्याल अपनी पाई पाई का, है ख्याल अपनी पाई पाई का। आइए एक और गजल सुनते हैं कि गजल का मतलब यूं है कि न कोई पाने की ख्वाहिश न कोई खोने की, न कोई पाने की ख्वाहिश न कोई खोने की, मुझे तो फिक्र है इस यहाँ को अपने धोने की, मुझे तो फिक्र है इस यहाँ को अपने धोने की। अर्ज किया है कि बचा के कल जिसे तूफान से मैं लाया था, बचा के कल जिसे तूफान से मैं लाया था, उसी ने साजिशें की है मुझे डुबोने की, उसी ने साजिशें की है मुझे डुबोने की, बचा के कल जिसे तूफान से मैं लाया था, उसी ने साजिशें की है मुझे डुबोने की। शेर यूं है कि जिहाद करते मुसलसल सफर में रहते हैं, जिहाद करते मुसलसल सफर में रहते हैं, मुजाहिदों को जरूरत नहीं बिछोने की, मुजाहिदों को जरूरत नहीं बिछोने की, जिहाद करते मुसलसल सफर में रहते हैं, मुजाहिदों को जरूरत नहीं बिछोने की। और गजल का आखिरी शेर है और ये फिर गिरा का शेर भी है, फिर आज बच्चों को झूठी तसल्लियां दूंगा, फिर आज बच्चों को झूठी तसल्लियां दूंगा, फिर आज जेब में कीमत नहीं खिलौने की, फिर आज जेब में कीमत नहीं खिलौने की। और गजल का मक्ता यूं है कि बना के हाथ का तकिया जफर में सोता हूँ, बना के हाथ का तकिया जफर में सोता हूँ, मुझे नहीं है जरूरत किसी बिछोने की, मुझे नहीं है जरूरत किसी बिछोने की, बना के हाथ का तकिया जफर में सोता हूँ, मुझे नहीं है जरूरत किसी बिछोने की, न कोई पाने की ख्वाहिश न कोई खोने की, मुझे तो फिक्र है इस यहाँ को अपने धोने की। समाज फरमाइए दूसरी गजल का मतलब यूं है कि दर्द व गम से संवारा गया, दर्द व गम से संवारा गया, दिल हमारा निखारा गया, दिल हमारा निखारा।

निखारा गया, दर्द गम से संवारा गया, दिल हमारा निखारा गया। गजल का हुस्न मतला है, उनको इतना संवारा गया, उनको इतना संवारा गया, आईना उन पे वारा गया, आईना उन पे वारा गया, उनको इतना संवारा गया, आईना उन पे वारा गया। शेर यूँ है कि जब्त टूटा तो हम रो दिए, जब्त टूटा तो हम रो दिए, जो भरम था हमारा गया, जो भरम था हमारा गया, जब्त टूटा तो हम रो दिए, जो भरम था हमारा गया। और अर्ज किया है गजल का शेर के, वो गया जब हमें छोड़ के, वो गया जब हमें छोड़ के, क्या कहें क्या हमारा गया, क्या कहें क्या हमारा गया, वो गया जब हमें छोड़ के, क्या कहें क्या हमारा गया। और गजल का आखिरी शेर है कि उठ के महफिल से क्या वो गए, उठ के महफिल से क्या वो गए, लुत्फ महफिल का सारा गया, उठ के महफिल से क्या वो गए, लुत्फ महफिल का सारा गया। और गजल का मकता यूँ है कि उसका दर छोड़ कर ए जफर, उसका दर छोड़ कर ए जफर, हाथ दर दर पसारा गया, उसका दर छोड़ कर ए जफर, उसका दर छोड़ कर ए जफर, हाथ दर दर पसारा गया, दर्द गम से संवारा गया, दिल हमारा निखारा गया। एक और गजल के कुछ शेर समाज फरमाइए। मतला यूँ है कि चेहरे को सौ तरह से वो अपने संवार के, चेहरे को सौ तरह से वो अपने संवार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के, चेहरे को सौ तरह से वो अपने संवार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के। गज़ल का शेर है कि खातिर में जो न लाते थे मसनद नशीन को, खातिर में जो न लाते थे मसनद नशीन को, भूखे बने हुए हैं वही इख्तदार के, भूखे बने हुए हैं वही इख्तदार के। और गजल का शेर है कि मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, बदला मुझे मिला है ये उनको संवार के, बदला मुझे मिला है ये उनको संवार के, मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, बदला मुझे मिला है ये उनको संवार के। गजल का अगला शेर है कि बस एक रुख ही देखा है तुमने बहार का, बस एक रुख ही देखा है तुमने बहार का, देखे हैं हमने बारहा आंसू बहार के, देखे हैं हमने बारहा आंसू बहार के। और गजल का आखिरी शेर है कि ताकत से अपनी वो जो उठाते थे चार को, ताकत से अपनी वो जो उठाते थे चार को, कांधे पे जा रहे हैं वो लोगों के चार के, कांधों पे जा रहे हैं वो लोगों के चार के, ताकत से अपनी वो जो उठाते थे चार को, कांधों पे जा रहे हैं वो लोगों के चार के। गजल का मकता है कि अपना चराग खुद ही जलाएंगे हम जफर, अपना चराग खुद ही जलाएंगे हम जफर, लेंगे न हम उजाले कभी मुस्तार के, लेंगे न हम उजाले कभी मुस्तार के, चेहरे को सौ तरह से वो अपने संवार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के। अर्ज किया है गजल का मतलब कि हर घड़ी हर पल मुसलसल इम्तिहान रखता हूँ मैं, हर घड़ी हर पल मुसलसल इम्तिहान रखता हूँ मैं, एहतसाब अपना कड़ा हर वक्त हाँ रखता हूँ मैं, एहतसाब अपना कड़ा हर वक्त हाँ रखता हूँ मैं, हर घड़ी हर पल मुसलसल इम्तिहान रखता हूँ मैं, एहतसाब अपना कड़ा हर वक्त हाँ रखता हूँ मैं। शेर अर्ज़ है कि इल्तिजाएं कोई भी सुनता नहीं है आजकल, इल्तिजाएं कोई भी सुनता नहीं है आजकल, नर्म लहजे में बला की सख्तियां रखता हूँ मैं, नर्म लहजे में बला की सख्तियां रखता हूँ मैं, इल्तिजाएं कोई भी सुनता नहीं है आजकल, नर्म लहजे में बला की सख्तियां रखता हूँ मैं। और गजल का शेर यूँ है, हेच है मेरी नजर में जाहिरी सोलह सिंगार, हेच है मेरी नजर में जाहिरी सोलह सिंगार, हेच है मेरी नजर में जाहिरी सोलह सिंगार, अपनी सीरत को सजाकर ज़ौफ़िशां रखता हूँ मैं, अपनी सीरत को सजाकर ज़ौफ़िशां रखता हूँ मैं, हेच है मेरी नजर में जाहिरी सोलह सिंगार, अपनी सीरत को सजाकर ज़ौफ़िशां रखता हूँ मैं। और गजल का आखिरी शेर भी है और गिरह का शेर भी है, समाज फरमाए, मैं मिटा दूंगा जहां से सारे बातिल के नखूश, मैं मिटा दूंगा जहां से सारे बातिल के नखूश, आदमी हूँ अज़्म तामीर जहां रखता हूँ मैं, आदमी हूँ अज़्म तामीर जहां रखता हूँ मैं, मैं मिटा दूंगा जहां से सारे बातिल के नखूश, मैं मिटा दूंगा जहां से सारे बातिल के नखूश,
आदमी हूँ,

समीन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जैसा कि गाना सुनाने से पहले हमने कहा था कि पानी का मुनासिब मकदार में या जिस्म को दरकार मकदार में इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। बहुत से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी पानी नहीं पीते और अक्सर पानी की कमी का शिकार रहते हैं और सेहत के मसाइल से भी दोचार रहते हैं। हाइड्रेशन की मुनासिब सतह को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। ज़्यादा पानी पीने के कई अहम फ़वाद हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि वज़न में कमी आती है। दिन में ज़्यादा पानी पीना वज़न कम करने में मदद देता है। ये दो तरीक़ों से मदद करता है। पहला ये कि जिस्म को पानी के वज़न को बरकरार रखने से रोकता है और वज़न घटाने में मदद मिलती है। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दों को बेहतर तरीके से काम करने में आसानी होती है, और जब गुर्दे पूरी सलाहियत के साथ फिल्टरिंग कर रहे होते हैं तो जिगर का तनाव दूर होता है, जो उसके बाद ज़खीरा शुदा चर्बी को मेटाबोलाइज करने का अपना काम आसानी से अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, इंसानी जिस्म के बहुत से दूसरे टिश्यूज़ यानी बाफ्तों की तरह दिमाग भी ज़्यादातर पानी से बना है, यानी पानी पर मुश्तमिल है। लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग अपनी आला सलाहियत का मुजाहरा करे, यानी कि अच्छी कारकर्दगी दिखाए, तो फिर अपने आप को अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें। कई मुतालात सामने आए हैं जिसमें पानी की कमी को खराबियों से जोड़ा गया है। किस तरह की खराबियां? यानी कि याददाश्त में कमी और जहनी थकावट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि पानी की कमी की वजह से पैदा होती हैं, और मूड में तब्दीली भी इसकी एक वजह है।

पानी की सही मकदार में, पानी की सही मकदार पीना इन चीज़ों में से एक है जो अपने दिमाग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पानी की मामूली सी कमी जिस्म पर कई असरात मुरतब करती है। जिस्म के जो टिश्यूज़ यानी बाफ़तें होती हैं, उनका हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है और ये जोड़ों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। उन बाफ़तों तक ग़िज़ाई अज़ा को पहुंचाने में पानी अहम किरदार अदा करता है। अगरचे ये ज़रूरी नहीं कि पानी जिस्म में जोड़ों को ही उतना सेहतमंद रखने का काम करता है, लेकिन ये जिस्म में तवानाई भी पैदा करता है। थके हुए बगैर दिन गुजारना काफ़ी मुश्किल है, और अगर पानी ज़्यादा मकदार में ना पिया जाए तो फिर डिहाइड्रेशन होता है, थकावट महसूस होती है, क्योंकि पानी मेटाबॉलिज्म और जिस्म के निज़ाम से जहरीले मादों को खारिज करने में अहम रोल निभाता है। इसीलिए पानी की कमी जिस्म के आफाल को कम करने का सबब बनती है और फिर इसी वजह से हम थकावट महसूस करते हैं। हाइड्रेट रहने से जिस्म के फुजले को खारिज करने में भी मदद मिलती है और तवानाई की सतह को बरकरार रखने में भी आसानी होती है। पानी जिल्द की सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतर है। कुदरती मॉइस्चराइज़र के तौर पर पानी काम करता है और जहरीले मादों को भी हटाता है जो अक्सर जिल्द की खराबी का सबब बनते हैं। पानी जिल्द को कुदरती तौर पर जवान और सेहतमंद नज़र आने में मदद करता है। अगरचे ये सेहत के एक अहम जुज़ से ज़्यादा कॉस्मेटिक है, इसे कॉस्मेटिक कहा जा सकता है, क्योंकि जिल्द की हालत पानी की वजह से बेहतर होती है। इसीलिए हम अक्सर ये बेशतर सुनते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, हम जब भी सेहत के हवाले से बात करते हैं या किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो डॉक्टर्स यही कहते हैं, तिब्बी माहरीन यही कहते हैं कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। पानी वज़न घटाता है, जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है, थकावट को दूर करता है, तवन्नाई पैदा करने में मदद करता है, बाफ़तों को यानी टिश्यूज़ को मजबूत बनाता है। समय पानी दरकार मकदार में पीने के बेशुमार फ़वाद हैं, और सबसे अहम बात यह है कि पानी ज़्यादा ना पीना, जिस्म को हाइड्रेट ना रखना हमें कई बीमारियों में मुबतला कर सकता है। पानी के इस्तेमाल के हवाले से और भी बातें करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक और नगमा।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। सामईन, हम मुनासिब मकदार में पानी पीने के फ़वाद पर बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पानी के बेशुमार फ़वाद हैं और ये जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाता है। रात की तवील नींद के बाद सुबह उठने पर हमारा जिस्म पानी की कमी का शिकार होता है और ये मामूली सी कमी जिस्मानी तवन्नाई को घटाती है। नखाहत, तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किलात, सर दर्द और कई मसाइल का बास बन सकती है। इसके मुकाबले में अगर हम मुनासिब मकदार में पानी पीते हैं तो जिस्म को ताजगी का एहसास होता है और जिस्म में पानी की सतह बेहतर होती है। पानी निज़ाम हाजमा के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये निज़ाम हाजमा को मुतहरिक करने में मदद करता है। सियाल जैसा पानी गिजाई नाली में मौजूद फजले और खुराक को हरकत देने में मदद करता है। गिजाई नाली के निज़ाम को बेहतर बनाता है और दिन भर हाजमे के अफाल को मौसर अंदाज से काम करने में मदद फराहम करता है। पानी का कसरत से पानी का इस्तेमाल आंतों के अफाल को बेहतर बनाता है, कब्ज़ से भी बचाता है। समय, ये तो आम सी बातें हैं, हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन पानी के इतने फ़वाद हैं कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो फिर जिस्म को जितनी मकदार में पानी की ज़रूरत है उतने पानी का रोज़ाना इस्तेमाल किया करें। तहकीकी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर पानी कम पिया जाए तो फिर कब्ज़ से मुतासिर होने का ख़तरा बढ़ता है। जिसमें पानी की कमी थकावट का बास बनती है। याददाश्त और तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ दिन के वक्त थोड़ी मकदार में पानी पीते हैं और फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर सेहत के कई संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। और ये लाजमी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर दिन भर में 8 ग्लास पानी पिया जाए। इस उसूल को अपनाते हुए हम सेहतमंद रह सकते हैं। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि वर्जिश करते हैं या गर्म आबो हवा में रहते हैं तो फिर उनके लिए 8 ग्लास पानी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर गर्म आबो हवा में उनकी रिहाइश है या फिर वो सख्त मेहनत व मशक्क़त करते हैं तो पसीने की वजह से जिस्म में पानी की मकदार घट जाती है। ऐसी सूरत में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। तो सामईन, सेहत के हवाले से ये कुछ बातें थी। और जैसे कि पानी ज़्यादा पीने के बेशुमार फ़वाद हैं, वैसे ही सुबह नहार मुँह, जिसे नहार पेट भी कहते हैं, पानी पीने के भी कई फ़ायदे हैं। अगर हम सुबह नहार पेट पानी पीते हैं तो जिस्म का अंदरूनी दर्ज हरारत बरकरार रहता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि दिन भर में मुनासिब मकदार में

पानी पीने से या खाना खाने से कबल पानी पीने से कम कैलोरीज को जुजोबदन बनाने में मदद मिलती है। सामईन, अगर हम ज़्यादा पानी पीने के फ़वाद पर बात करेंगे तो शायद वक्त काफ़ी नहीं होगा। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप सेहत व तवन्ना रहना चाहते हैं, सेहतमंद व तवन्ना रहना चाहते हैं, अपनी सेहत को बेहतरीन रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो फिर जिस्म को पानी की जितनी मकदार की ज़रूरत है उतने पानी का इस्तेमाल कीजिए। इस हवाले से कई तहकीक की गई हैं और हर तहकीक यही कहती है कि पानी इंतहाई ज़रूरी है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से कुछ बातें हम कर रहे थे। आइए बज में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत सुरीले गाता जा। समय आज के गीत सुरीले गाता जा में हम एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिनका शुमार बेहतरीन अदाकाराओं में किया जाता है। उन्हें बेहद पसंद किया गया है और वो अभी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हैं। अक्सर वो बेशतर वो कई फिल्मों में अदाकारी करती नजर आती हैं और उन्हें आज भी शायकीन उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे, यानी 70, 80, 90 की दहाई में। वो अदाकारा हैं बॉलीवुड की सबसे मशहूर और जाजिब नज़र शख्सियत का हिस्सा बनने वाली रेखा जी। रेखा जी तमिलनाडु के शहर मद्रास में पैदा हुई थी। उनका हकीकी नाम भानु रेखा गणेशन है। उनके वालिद तमिल अदाकार थे और वालदा तेलुगु अदाकारा थी। बचपन से ही उन्हें अदाकारी का शौक था, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज तेलुगु फिल्मों से किया और इसके लिए उन्हें काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर का आगाज सिर्फ 11 साल की उम्र में किया था। वो तमिल फिल्मों में नजर आई थी, फिर वक्त गुजरता गया और उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। बॉलीवुड की इस मशहूर अदाकारा के बारे में हम आपको और भी बताएंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इनका एक खूबसूरत सा गीत जो आज भी पसंद किया जाता है, गाया और गुनगुनाया जाता है।

समीन, रेखा जी ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। साल 1969 में वो हिंदी फिल्म दो शिकारी में बतौर हीरोइन जलवा गर हुई और फिर फिल्मी दुनिया पर राज करने लगी। साल 1976 में रेखा जी ने पहली मर्तबा अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और कहते हैं फिल्म अमर हो गई। उसके बाद दोनों की जोड़ी नटवर लाल में नजर आई। खून पसीना और बहुत सी फिल्मों में दोनों ने काम किया। सन 1978 में आई फिल्म मुखद्दर का सिकंदर ने रेखा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिर इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा जी की जोड़ी अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ बेहद पसंद की गई। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और उन फिल्मों को शायकीन ने खूब पसंद किया। समयन, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा। रेखा जी के बारे में आपको और भी बताएंगे, साथ साथ उनके फिल्मी नगमे भी सुनाएंगे। आइए सुनते हैं एक और गाना।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा से, और हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। समय ये कहा जाता है कि रेखा जी को सियाहत पसंद है, वो दुनिया घूमने के लिए एयर हॉस्टेस बनना चाहती हैं, चाहती थीं, लेकिन हालात ने उन्हें पर्दे सिमी का सितारा बना दिया। वो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा बन गई और लोगों के दिलों पर राज करने लगी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बॉलीवुड की पहली ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने जिम और कसरत का आगाज किया था। वो पहली अदाकारा थी जिन्होंने तैराकी सीखी थी। इतना ही नहीं, वो मुख्तलिफ फ़नून में भी महारत रखती हैं। वो हारमोनियम बजाना जानती हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए हैं। रेखा जी कई जबानें जानती हैं, हिंदी के अलावा वो अंग्रेज़ी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फ्रांसीसी, रूसी, बंगाली और उर्दू जानती हैं।

समीन रेखा जी की कामयाब फिल्मों में सावन भादो, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी किस्मत की, नमक हराम, धर्म करम, धर्मात्मा, उत्सव, मुखदर का सिकंदर, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, जुबेदा, कोई मिल गया वगैरह काबिले जिक्र हैं। और इन्हीं फिल्मों की वजह से उन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। समयन आपको ये भी बता दें कि रेखा जी ने मुख्तलिफ अदाकाराओं के लिए डबिंग भी की। सन 1981 की फिल्म याराना में उन्होंने नीतू सिंह के लिए, 1968 में आखिरी रास्ता नामी फिल्म में श्रीदेवी के लिए और सन 1988 में आई फिल्म वारिस में स्मिता पाटिल के लिए हिंदी जबान में डबिंग की थी। अदाकारी के अलावा वो ग्लोकारी का भी शौक रखती हैं। मौसीकार आर डी बर्मन की दरख्वास्त पर रेखा जी ने अपनी फिल्म खूबसूरत में सारे नियम तोड़ दो गाना गाया था। समयन रेखा जी के बारे में और भी आपको बताएंगे, लेकिन सुनते हैं उमरा औजान का ये खूबसूरत सा गीत।

समीर रेखा जी की फिल्म उमरा औजान का ये खूबसूरत सा गाना था और इसे आवाज़ दी थी आशा भोसले ने। समीर फिल्म उमरा औजान की हिदायतकारी मुजफ्फर अली ने की थी और ये फिल्म सन 1981 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म मिर्ज़ा हादी रुसवा के नावल उमराव जान अदा पर मबनी है। उन्होंने यानी रेखा ने ये किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया है कि उनका नाम सुनते ही सबसे पहला किरदार जो जहन में आता है वो उमराव जान है।

और रेखा जी ये एतराफ़ कर चुकी हैं कि उन्हें अदाकारी में कभी दिलचस्पी नहीं थी, और तकरीबन 10 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने अदाकारी को संजीदगी से लेना शुरू किया था। जैसे जैसे वो अपने अदाकारी के सफ़र में आगे बढ़ती गई, एक बेहतरीन अदाकारा बनकर उभरी।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:49 हो रहे हैं। सामईन, गीत सुरीले गातजा में हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। आपको बता दें कि सन 1980 में आई फिल्म खूबसूरत के लिए रेखा जी को बेहतरीन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। फिर सन 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग उनकी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और राकेश रोशन की हिदायत में बनी इस फिल्म में उन्हें बेहतरीन अदाकारा के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 90 की दहाई में रेखा जी ने फिल्मों में काम करना काफ़ी हद तक कम कर दिया था, लेकिन साल 1996 में वो फिर पर्दे पर नजर आई। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्होंने गैंगस्टर माया का किरदार निभाकर नाजरीन को मशहूर कर दिया और फिल्म में बेहतरीन माविन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया।

समयीन रेखा जी को साल 2010 में आला तरीन शहरी एजाज़ पद्मश्री से भी नवाजा गया है और वो अब तक 180 से ज़ायद फिल्मों में कई लाजवाब किरदार निभा चुकी हैं। बढ़ती उम्र के बावजूद उनके टैलेंट और खूबसूरती में किसी भी किस्म की कमी नहीं आई है। आज भी उनको उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है, वहीं उनकी पुर असरारियत भी उनकी जाज़िब नज़र शख्सियत का हिस्सा रही है।

समीन गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। आइए पेश है नैरंग की आखिरी पेशकश। समाज फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से पयाम-ए-शब।

कहाँ मिलेगी मिसाल मेरी सितमगिरी की, कि मैं गुलाबों के जख्म कांटों से सी रहा हूँ। बाज़ औक़ात इंसान मसाइल का हल भी गलत तरीक़े से तलाश करता है। अगर ज़ख्मों का इलाज ही तकलीफ देने वाली चीज़ों से किया जाए तो दर्द कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। यह नसीहत है कि ज़िंदगी में गलतियों, तलखियों और सख्त रवैयों से मसाइल हल करने के बजाय मोहब्बत

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो कि दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।

0: अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स। Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhausaheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the 6 MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers 6 important railway sections of East Coast Railway, including Baguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khurda Road, Balangir, Naupada, Gunapur, Lanjigarh Road to Junagarh and Bobli, Salur. The Haj Committee of India has started inviting applications.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 5 सेकंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम गोल्डन एरा के उन रोमांटिक गीतों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, और साथ ही साथ गोल्डन एरा के साथ साथ उसके बाद के दौर के भी कुछ नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आप बेहद पसंद करते हैं और उन्हें बार बार अब गाना भी चाहते हैं, गुनगुनाना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। उन्हीं नगमों में से पहला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1971 की रखवाला से। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में धर्मेंद्र, लीना चंद्रवाकर, विनोद खन्ना, मदनपुरी, जगदीप, राकेश पांडे वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, और साथ ही साथ उनके हैं रफी साहब, संगीत है कल्याण जी आनंद जी भाई का। तो आइए फिल्म रखवाला से इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ फेरोज, तो आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है, स्वागत है।

रखवाला फिल्म का यह नगमा था लता जी और रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और गोल्डन ईरा के साथ साथ जो चंद नगमे हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके बाद के, वो आपको हम सुनवा रहे हैं गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। और ये जो नगमा था वो था रखवाला से, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये फिल्म आई थी 1971 में। 70 के ही दशक की एक और बेहद खूबसूरत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, और ये फिल्म आई थी 1974 में। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है जिसको अपनी आवाजें बख्शी हैं हम सब के चहेते मुकेश साहब और लता।

इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में मनोज कुमार, शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी, प्रेमनाथ, धीरज कुमार, कामिनी कौशल, अमिताभ बच्चन साहब, अरुणा ईरानी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था और यह फिल्म उस दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत जिसे लिखा है संतोष आनंद साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। आवाजें हैं लता जी और मुकेश साहब की। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में आपके लिए।

लता जी और मुकेश साहब की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में नगमा था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। ये फिल्म आई थी 1974 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में मैं आपके लिए उन चुनिंदा नगमों के साथ हाजिर हूँ, लेकर आपका अपना पसंदीदा नगमा जो आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों में से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा 50 के दशक की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बाजी से। यह फिल्म आई थी 1951 में, जिसके निर्माता थे देवानंद साहब और निर्देशक थे गुरुदत्त साहब। इस फिल्म को लिखा था बल्ला सहनी साहब ने और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में खुद देवानंद साहब, गीता बाली, कल्पना कार्तिक, कृष्ण धवन, के एन सिंह, राशिद खान, जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा था साहिब लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था एसटी बर्मन साहब ने। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा गीता दत्त जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:35 और 20 सेकेंड और महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1968 में और ये फिल्म है जिसका नाम है साथी। CB श्रीधर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी ग्रेवाल, पहाड़ी सान्याल, डेविड इब्राहिम, वीना वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में आपके लिए है।

शादी फिल्म का यह नगमा था, आवाज़ें थी मुकेश साहब और सुमन कल्याणपुर जी की। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। और वो नगमा है 1961 में आई फिल्म आस का पंछी से। मोहन कुमार साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था वैजयंती माला, राजेंद्र कुमार, राज मेहरा, नासिर हुसैन, मुमताज, लीला चिटनीस, ब्रह्मा भरद्वाज वगैरह ने। इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है एक बार फिर से मुकेश साहब और इस बार लता जी उनके साथ है और संगीत है शंकर जयकिशन साहब का। तो आइए सुनते हैं फिल्म आस का पंछी का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फेरोज और महफिल है आपके अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। उन्हीं नगमों में से हम कुछ ऐसे नगमे आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है। और ये नगमा है फिल्म आरती से। ये फिल्म आई थी 1962 में। फानी मजुमदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था मीना कुमारी ने, अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, शशिकला, राजेंद्र नाथ, केशव मुखर्जी और महमूद वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रोशन ने। खास बात यह है कि इस फिल्म में शशिकला जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर का पहला अवार्ड मिला था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आपके लिए।

అరదే ఫిల్మ్ గయ నగమాత ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేఫ్ఎం గోల్డ్ ఛానల్ స్వదేశంలో ఏక్ మెగా హెడ్స్ పర్ ఆవాజే థీ ఆశా జీ ఆర్ మొహమ్మద్ రఫీ సాహబ్ కి. और दोस्तों मैं फिर से जी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज. और गीत मेरे मनमीत में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और वो फिल्म है 1958 में आई साधना से. बी आर चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था वैजयंती माला, सुनील दत्त, लीला चिटनीस और साथी कलाकारों में मनमोहन कृष्ण, उमा दत्त, मूलचंद, उमा भेंडे, नाजिर कश्मीरी और नंदनी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय निभाया था. इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और माफ कीजिएगा साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है दत्ता नायक ने. इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा नहीं बल्कि एक कव्वाली है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और एस बलबीर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में. तो आइए सुनते हैं वही कव्वाली चलते चलते इस गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर.

0: साधना फिल्म की इसी कव्वाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मंजू रहेंगे आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12:03। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

वाकई ये मिलन की रुत तो है ही, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब दो ऐसे दिल मिलते हैं जो एक जैसा सोचते हैं, समझते हैं और शायद महसूस भी एक जैसा ही करते हैं। और आपको तो पता ही है, मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, कभी हमारा मिलन अपनी यादों से होता है, कभी किसी पुराने सपने से, और कभी कभी उस रूप से होता है जिसे हम भाग दौड़ में बहुत पीछे छोड़ आए थे। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

वैसे वादा निभाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है जिंदगी की भागदौड़ में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन जो लोग अपने शब्दों की कीमत जानते हैं वो हमेशा दिलों में जगह बना ही लेते हैं। और शायद यही एक वजह होती है कि ये गाना हमेशा हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इस गाने में प्रेम तो है ही, लेकिन बात है भरोसे की, और किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर सबसे ज़्यादा टिकी होती है। जिस रिश्ते में सबसे ज़्यादा भरोसा होता है उसकी नींव उतनी ही मजबूत होती है। तो इस खुशनुमा रात में अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान याद आ रहा है जिसने वादा निभाया हो, तो मन ही मन उसे ये गाना हम डेडिकेट कर सकते हैं। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

जब रात ने घुंघरू पहन ही लिए हैं और वो भी हमारे साथ थिरकने लगी है, तो फिर कोई कैसे सो सकता है। तो चलिए फिर इस महकती और चहकती सी रात में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

गुफ्तगू हो अगर दिलों के बीच, गुफ्तगू हो अगर दिलों के बीच, हर्फ कुछ हैसियत नहीं रखते, तुमको फुर्सत मिले तो लिख देना, तुमको फुर्सत मिले तो लिख देना, खत कोई अहमियत नहीं रखते। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:42 और 58 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिकंधा। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज़ में।

आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने एक बात नोटिस की, बल्कि ये कहूंगी कि मैंने एक बात नोटिस की है। और वो बात ये है कि इतने सारे गानों को सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि दौर चाहे जो भी रहा हो, पर हर दौर में इश्क की भाषा एक ही होती है।

हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में साधारण सा दिन भी खास लगने लगता है ना। उनके होने भर से हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मुश्किल रास्ते आसान हो जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती भी शायद यही है कि वो हमें बदलते नहीं हैं बल्कि बेहतर बनाते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। अब बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खरीद एजेंसियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद की समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य खरीद में तेजी लाने, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बाजार में जरूरी दखल को मजबूत करना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंचू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहाने प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ, फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है।

फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1961 में और इस फिल्म को लिखा, निर्मित और निर्देशित किया था नासिर हुसैन साहब ने। और ये नासिर साहब की पहली फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्माण किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देवानंद और आशा पारेख ने, प्राण ने खलनायक की भूमिका निभाई थी और राजेंद्र नाथ सहायक भूमिका में नज़र आए थे। और अब हम सुनते हैं अगला गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म साथी से।

आवाज थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, संगीत नौशाद साहब का और गीतकार थे बजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था सीवी श्रीधर ने। इस फिल्म को संगीत से सजाया था नौशाद साहब ने और मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, सिमी गरेवाल और पहाड़ी सान्याल ने। यह फिल्म 1961 में आई एक तमिल फिल्म की रीमेक थी। और अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर उसने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, फिर एक जरा सी बात पर जीना पड़ा मुझको।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। गीत सुहाने प्रोग्राम का हसीन और खूबसूरत सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू के साथ। वक्त हुआ है 1:33 और 37 सेकेंड।

शफी साहब और लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म दिल तेरा दीवाना से, और संगीत था शंकर जयकिशन का। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1962 में और ये एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शमी कपूर, भाला सिन्हा, महमूद, प्राण, ओम प्रकाश ने, और संगीत शंकर जयकिशन साहब का था। और इस फिल्म का संगीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और दर्शकों द्वारा सराहा गया था। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत, बहुत ही सुरीली आवाज़ में, अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म CID से।

0: फिल्म CID से शमशाद बेगम की आवाज में सुना आपने ये गीत। ये फिल्म 1956 में आई थी और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था राज खोसला ने और निर्माण किया था गुरुदत्त ने। देवानंद शकीला, जॉनी वॉकर, KN सिंह और वहीदा रहमान ने इस फिल्म में अभिनय किया था और देव साहब इस फिल्म में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था और गीत बजरू सुल्तानपुरी और जान निसार अख्तर ने लिखे थे। ये फिल्म वहीदा रहमान की हिंदी फिल्मों में पहली फिल्म थी और अब हम सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में और इस गीत को पिक्चराइज किया गया है वहीदा रहमान पर।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे पसंद

फिल्म का नाम 20 साल बाद, और आवाज थी हेमंत कुमार की और संगीत भी हेमंत कुमार का। गीतकार थे शकील बदायूनी और इस गीत को पिक्चराइज किया गया था विश्वजीत और वहीदा रहमान पर। अगला गीत अब तक पहुंच रहा है मुकेश की आवाज में और फिल्म का नाम है श्री 420।

सलाम मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस घटना की जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने ग्रुप जे के एक मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्रुप जे के एक अन्य मैच में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा जो भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। People, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee

तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ ना सको, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:30। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रात के जज्बात को, रात के एहसास को, दर्द को अपनी बातों से, गीतों से और कुछ शायरी से समझने की, बयां करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

जब भी इस गाने को सुनूं तो ऐसा लगता है कि दो सहेलियां आपस में दिल के राज खोल रही हो, है ना? सच सच बताइए, इस गाने को सुनकर आपका मन बहका या नहीं? अगर आपका मन भी बहक गया है तो फिर उस खास इंसान की यादों में खो जाना चाहिए जिसे इस वक्त आप याद कर रहे हैं। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वैसे मेरा नाम तो मंजू है और आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में गए हों या और वहाँ पर किसी अजनबी से कोई ऐसा अजनबी नज़र आया हो और जिसको देखकर ऐसा लगा हो कि हाँ शायद यही वो इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। सच सच कहूँ तो आँखों की भाषा बहुत कमाल की होती है, हम नज़रों से पहचान लेते हैं कि किस इंसान से हमारा रिश्ता कितनी दूर जाने वाला है। जब आँखों पे बात चली है, निगाहों पे बात चली है, तो एक गाना निगाहों पर और हो जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार

कल रात तुम सपने में आए थे, कल रात तुम सपने में आए थे। हम दोनों एक दूसरे को माफ कर हंसी मजाक कर रहे थे। ताज्जुब की बात ये कि तुम्हारा चेहरा जो जहन में धुंधला पड़ गया था, रात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। आवाज़ भी बिल्कुल वही, खुशबू भी वही। मैं सपने से उठकर एक साथ इतना खुश और उदास कभी नहीं हुई।

100.5 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। रात सुरमई का हसीन और यादगार सफर आप तय कर रहे हैं मेरे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू के साथ। वक्त हुआ है 2:39 और 20 सेकेंड। रात सुरमई, जहां हम रात के सुरों को, दिल के दर्द को, इश्क के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं अपने कुछ गानों से, अपनी कुछ बातों से, सुनी सुनी रातों को, गीतों से भरने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर इसी कड़ी में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

चुनना वाकई बहुत मुश्किल काम होता है, और अगर हामी भर ही दी है तो फिर इसे खूबसूरत बात और कुछ नहीं हो सकती। घड़ी की सुइयों के साथ साथ आपकी और मेरी मुलाकात लगातार और गहरी होती जा रही है। रात का सफ़र अभी लंबा है और यादों का ये कारवां रुकने वाला नहीं है। तो चलिए फिर सुनते हैं अगला गीत।

इस गाने को सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि प्यार में जो रूठने और मनाने का सिलसिला होता है ना, यही मोहब्बत की असली ताकत होती है, यही जान होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दिलबर है या कोई ऐसा है जो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, तो सच कहूँ तो बहुत जल्द उसको मना लेना चाहिए। और अगर वो फिर भी ना माने तो ये गाना उसी के लिए।

तोता मैना की कहानी भले ही पुरानी हो गई हो, पर आपकी और हमारी कहानी कभी पुरानी नहीं होने वाली। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी रात सुरमई में। आज के लिए बस इतना ही। 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी वंदना चुग। मुझे यानी अपनी रात की हमसफर मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक।

0: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया है कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्रों द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. CM Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victims' families at King George's Medical University, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting expressing outrage over the

0: दोस्तों नमस्कार। FM 16.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम हमराही और मैं आपकी दोस्त वंदना चुग।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना

0: पहले तुम।
1: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
0: अच्छा मैं कहती हूँ

बॉबी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी की रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, आपको भी अगर किसी से कुछ कहना हो तो कह देना चाहिए, क्योंकि मन में बात रखकर कोई फायदा नहीं है।

फकीरा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत था और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और तर्स बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, हमरा ही कार्यक्रम के अंतर्गत आप युगल गीत सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।

दोस्तों, क्या आपने इस गीत को सुनते हुए उस दौर को याद नहीं किया जब चिट्ठी लिखा करते थे और जवाब का भी इंतजार किया करते थे? तुम्हारी कसम फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ हद किसी से कम नहीं फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है आरटी परमन ने।

महबूबा फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्श की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। आनंद बख्श ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

0: दोस्तों अगला गीत कह रहा है, जब चारों तरफ बहार है तो अब साथी को भी आ जाना चाहिए।
1: कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

मोम की गुड़िया। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज कितनी मधुर थी, आनंद बख्शी जी की आवाज में ये गीत और साथ में लता मंगेशकर थी। आनंद बख्शी जी की ही रचना थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों अब आखिरी पड़ाव की तरफ हैं और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ चोर मचाए शोर फिल्म से गीत इंद्रजीत सिंह तुलसी ने लिखा है और धुन तैयार की है रविंद्र जैन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। 6 छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण करने, पीड़ित परिवारों से मिलने और घायलों का हालचाल जानने के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हुए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत

0: तो तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रविवार रात रास लाफान में हुई घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दूतावास ने कहा है कि वे कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने और मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। इस नई नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के जिन विषयों की परीक्षा नहीं हो सकी उनमें निजी छात्र द्वारा कक्षा 10 और पिछली बार दी गई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम का आकलन किया जाएगा। FIH प्रो लीग के लंदन राउंड के पहले मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary, Home, will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an excretion of 2 lakh rupees from the PM's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Meanwhile, UP government has ordered a high-level inquiry into the incident. After inspecting the scene, meeting with the victim's family at King George's Medical University, KGM, Lucknow, and inquiring about the well-being of the injured, Chief Minister Yogi Adityanath convened a high-level meeting. Expressing outrage over the incident, he directed the strictest possible action against those responsible. Following the CM's instructions, a special investigation team was formed to investigate the incident. Its members are tasked with submitting their report within 7 days. On the other hand, taking swift action after the tragic fire incident, the police have registered the case against 6 people and arrested 4 of them yesterday night. Four officials of

दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ, और मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग। सुप्रभात।

दोस्तों, बात तो बिल्कुल सच है कि किसी को अपना बना लेना या किसी का बन जाना, ये तो अपने हाथ में ही है। बहार फिल्म से अभी आपने गीत सुना शमशाद बेगम की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और एस डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, बहुत जब गर्मी होती है ना, तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना।

ये गीत था मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था और संगीत ओपी नैयर का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। आप सुनेंगे शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

इम्तिहान फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, किशोर कुमार का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ जीने की राह फिल्म से, आशा भोसले, हेमलता, मोहम्मद रफ़ी और उषा मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, बच्चों की मासूमियत कितने दिल को छू जाती है ना। और मासूम बच्चों से हम बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे चंदा को मामा। तो आज तक सभी बच्चे चंदा मामा बोलते हैं। बच्चों को जो हम सिखा देते हैं वही सीखते हैं। यहाँ भी बच्चे चंदा को ढूंढने तारों की तरह निकल पड़े हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले का गाया हुआ धर्मपुत्र।

0: दोस्तों, आप भी जब तन्हाई में बैठते होंगे तो कोई ना कोई अपना तो आपको भी याद आता ही होगा। अरुणिमा प्रोग्राम में आप गीत सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ।
1: देख लिया कहाँ रहता हूँ।
0: दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से सपने संजोता है और उसे मालूम होता है कि वो कभी ना कभी अपने मकाम पर पहुंच ही जाएगा।
2: चलो मुझे घर पहुंचा दो।

थी फिल्म से, ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन का संगीत। दोस्तों बहुत बार आप कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो दिल करता है अगर अपनों का साथ होता तो सफ़र अच्छा कट जाता।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस। हंसर जयपुरी ने गीत को लिखा था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है। ज्वेल थी फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की है एसडी परमन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामित अभियुक्तों और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इसके लिए विशेष जांच दल गठित की गई है और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि ये दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक विश्वसनीय शक्ति भी बन गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1,000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण

भोर सुहानी इस कार्यक्रम में गीतों का आनंद लेते हुए एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम सब FM 100.1 MHz पर आप सभी अपने दोस्त वंदना चौक के साथ। सुप्रभात।

0: कहते हैं ना कि इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ हमेशा हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता रहता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपना

सुख आता है, दुख आता है और फिर सुख आता है, यही क्रम चलता रहता है। दिल के घाव जख्मों से नहीं डरते, दिल को भी मालूम है कि ये रुत भी आएगी, लेकिन जो इसमें आगे बढ़ जाता है, जीत लेता है वो सब कुछ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 200 जिंदगी की सच्चाई से जुड़े गीतों के साथ भोर सुहानी कार्यक्रम में फिर से आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त वंदना चुग।

दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं होता। देरी भले ही हो जाए लेकिन वो देता जरूर है, और जब देने पे आता है तो बस छप्पर फाड़ कर देता है।